0: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
5: महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकर। 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ

0: यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: केरल में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरल में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम 4थे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्य की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: जी, मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: जिला हिसार, उकलाना मंडी।
0: अच्छा, बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैम, हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, तो दिन भर में कौन से काम है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं करने में?
1: सबसे ज्यादा मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी।
0: अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला, आपकी पसंद का काम जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं।
1: सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, गुजिया, गुलगुला, पकौड़े, यही सब।
0: ये सब सर बारिश के पकवान है जो आपने बताया ना, गुलगुले पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: जी मैम, पसंद तो किए जाते बारिश के मैम, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नागपंचमी नहीं थी, नागपंचमी 17 तारीख को तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नागपंचमी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन।
0: और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं?

0: आते हैं?
1: जी मैम, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए, और वो करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं।
0: तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज आपने कौन सा गीत चुना है?
1: जी भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रक्षाबंधन के लिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं दिया माँ मुल्ला बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से।
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: मैं बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम
0: जी,
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहाँ घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का।
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा
1: हाँ
0: है बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रंग फिल्म से।
2: तुझे

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से?
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह। मैम,
0: कृष्णा सिंह, कृष्णा जी आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी
1: मैम, सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल खिलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम, उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम।
0: हाँ जी,
1: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
0: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे, वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: खूबसूरत है वो इतना,
0: रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ मैम, थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम।
0: तो ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम।
0: वंदना जी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं। बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियां अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम। और
0: अच्छा,
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम।
0: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है, और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
1: जी मैम।
0: तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: मैम रिमझिम बरसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
0: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैम।
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। हाँ जी
0: हाँ जी नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ मैम।
0: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
1: जी मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ मैम।
0: हाँ जी सुल्तानपुर से बात कर रही हैं।
1: हाँ जी मैम मेरा छोटा सा शहर है मैम। मैं ब्लाइंड हूँ मैम।
0: जी
1: मैम और मैं बैचलर हूँ मैम।
0: अच्छा।
1: मैं बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से।
0: जी
1: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
0: अच्छा आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
1: मैंने अवधी लोकगीत गाए थे मैम।
0: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोकगीत
1: जी मैम।

0: जी मैम, मैंने यही गाया था।
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने
0: जी।
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैम मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
1: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
0: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: हाँ दीदी।
0: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
1: हाउसवाइफ हूँ दीदी
0: जी।
1: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
0: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
1: जी।
0: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
1: दुकान पर वो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में। अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं?
1: दीदी मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है।
0: सेहतनामा अच्छा लगता है?
1: जी।
0: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
1: जी।
0: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
0: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
1: इसे समझो ना रेशम की डोर बैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया।
0: आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मढ़िया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं धनेश्वरी जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ
0: जी।
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और आपने शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं, अपने बारे में बताइए हमें।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ, घर
0: हाँ
1: में
0: जी
1: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
0: जी
1: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: आर्मी
1: मुझे
0: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे
1: जी।
0: शहरों में आप रही होंगी।
1: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे।
0: तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं।
1: जी, जैसे रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
0: अच्छा, और इतने सारे शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा, तो कौन से शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
1: अच्छा, तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है,
0: जी।
1: बहुत अच्छा लगा था।
0: और आपके क्या क्या शौक हैं?
1: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल वूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है,
0: हाँ,
1: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाले घर जाना है करके।
0: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है।
1: मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर सिटी होता है ना,
0: जी
1: तो उसमें मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
0: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?

0: मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं
1: जी। आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
1: आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: सखी, अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं?
1: फातिमा मनियार।
0: फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: नासिक, महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं? हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जिसमें प्लाजो भी होते हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं और भी कई तरह की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी बहन जी।
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सिर्फ तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: हाँ।
0: आपको सुनवा रहे हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत।

0: थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
1: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
0: हाँ जी, मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिछड़े गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है
1: जी।
0: फिर 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
1: और बहुत सारे श्रोता जिन्हें संदेश हमें लिखकर भेजते हैं, आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
0: हाँ मैं तो लिखती हूँ, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना
1: जी,
0: तो क्वेश्चन के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना छोड़ी तो उसको भी लिख देते हैं कभी कभी, कभी तो शामिल हो जाता कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
1: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
0: हाँ जैसा कि मैं अपने पीहर से काफी दूर हूँ, मेरा पीहर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ,
1: तो जब राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
0: बहुत बहुत, मतलब सावन आते ही से समझे याद आ जाता पीहर तो, और रक्षाबंधन तो बहुत मिस करती हूँ वहाँ पर जाना। तो मैं चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहाँ से दूर हूँ तो मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ। चंदारी भैया के ना, भैया के ना, बहना याद करे ओ चंदारे।
1: भगवती जी आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी 7वें आसमान पर बैठी हूं। मतलब हद होती है भाई। पता है, एक तो मैं यहाँ पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूँ, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूँ। मुझे मालूम था यहाँ का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो, कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहां सुकून मिलेगा।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चीटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहाँ यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा। पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी, तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूँ, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूँ क्या? कहा था कि भाई आज नहीं, संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हाँ कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूँ, पर अब और नहीं। मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच।

ये देखो यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, बड़ी स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूँ। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं और यहाँ नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में PhD कर रखी हो। देखो बताई दे रही हूँ, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

इस बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचवाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़ कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

पूरे साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ। क्यों, अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने थोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं, मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

उसकी इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूं। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना, ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूँ, क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मोड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो, लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं, वो लगातार बुद्धू मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रखकर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात? उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी, बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा, अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या, पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दें। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम।

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया, मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग

को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं तो हम वक्त के कैदी नहीं खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश

0: ఇది ఎలటి హుషారు. హుషారు కార్యక్రమం నిత్యరాత్రి 8 నుంచి 8:45 వరకు ఉంటుంది. రేపటి హుషారులో మరిన్ని హుషారైన పాటలు నచ్చు. రాత్రి ఈ రోజు రాత్రి 10:30 నుంచి 11:00 దాకా మధురిమలో మనసుకు హత్తుకునే మధుర గీతాన్ని నచ్చు. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా సమయం 8:45 కావస్తుంది. మరి కాసేపట్లో సమాచార సంధ్య, ఆ తర్వాత న్యూస్ 8, ఆ తర్వాత స్పాట్ లైట్. ఈ 3 కార్యక్రమాలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలీ అవుతాయి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార సంధ్య కే సాథ్ మే విశాల్ శర్మ. भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी. विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं. नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई. सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे. सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी. मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट. देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही. और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं.
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ. और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया. आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं. उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है. 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं.
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है. 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी

0: शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
1: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
2: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
1: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
3: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
7: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि

0: तो से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
1: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
4: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए।

0: भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement. Ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Velaval Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. H.J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. J. Shankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding both nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at the Shuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land and efforts are underway to evacuate them.

नायिका के रूप में कुमकुम ने करीब 15-20 फिल्मों में काम किया, ज्यादातर फ्लॉप हो गई। उन पर फिल्माए गए गीत जरूर हिट हुए। कुमकुम पर फिल्माए ऐसे बहुत कम गीत हैं जो लोकप्रिय ना हुए हों। गीतों के साथ कुमकुम का परफेक्ट मनोहारी नृत्य तथा चेहरे के हाव भाव लोगों को दीवाना बना देते थे। नायिका के रूप में कुमकुम की कुछ फिल्में थोड़ी बहुत चली भी थीं। दिल भी तेरा हम भी तेरे, इसके हीरो थे धर्मेंद्र उनके शुरुआती दौर में। घर संसार, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्में भी अच्छी खासी मधुर संगीत के कारण चली थी। सन ऑफ इंडिया, तू नहीं और सही, पिंकांग, कव्वाली की रात, मैं वो ही हूँ आदि कुमकुम की अन्य नायिका वाली फिल्में थी। कुमकुम पर फिल्माया दूसरा गीत मैंने पारिवारिक मेलोड्रामा फिल्म घर संसार से लिया है। इसमें रवि के मेलोडी वाले गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। इसमें कुमकुम की जोड़ी राजेंद्र कुमार के साथ बनी थी जो नए नए आए थे। कल्ट फिल्म मदर इंडिया में दोनों की जोड़ी नजर आई थी और खूब फबी थी। फिल्म घर संसार में बलराज सहनी का भी बड़ा रोल था। इस फिल्म का कुमकुम और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया एक युगल प्रेम गीत बहुत मधुर बन पड़ा है। मैं इसे अपने सर्वप्रिय गीतों में से एक मानता हूँ। इसे गाया है आशा भोंसले के साथ मन्ना डे और साथियों ने। मजरूह के इस गीत में नदी का किनारा, चांद तारे, उतार चढ़ाव, मेलोडी का रस, कुमकुम का भावपूर्ण अभिनय था, मधुर ऑर्केस्ट्रा है। मैं इसे अक्सर सुनता रहता हूँ, आपको भी अवश्य पसंद आएगा। सुनिए।

कुमकुम के नृत्यों की एक खासियत थी, शब्दों के ऊपर नृत्य करते वक्त अभिनय करना उनकी बहुत बड़ी खूबी मानी गई। उस पर तुर्रा यह कि उनका सौंदर्य डांस करते समय निखर जाता था, पर्दे पर उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। उनके नृत्य कौशल तथा सुंदरता का मिश्रण 1964 की फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में देखने को मिला। इस फिल्म के निर्देशक थे शांतिलाल सोनी। इनका कैरियर ज़्यादा चमक नहीं पाया। लक्ष्मीकांत पैरलाल ने इस फिल्म के गीतों में अच्छी सॉफ्ट ट्यून दी हैं। इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया एक गीत मेरे महबूब कयामत होगी आज एक क्लासिक कल्ट गीत माना जाता है। यह किशोर के श्रेष्ठ पुराने गीतों में भी गिना जाता है। किशोर और कुमकुम की रोमांटिक जोड़ी दर्शकों को खूब भाई। किशोर का हास्यपुट का रोमांटिक अंदाज तथा कुमकुम की बिंदास मासूमियत दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोली। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म ज़्यादा चल तो नहीं पाई, पर कुमकुम ने दिखा दिया कि वे मौका मिलने पर अच्छा अभिनय भी कर सकती हैं। प्रस्तुत नृत्य गीत सुंदरी कुमकुम पर फिल्माया गया है। उनका नृत्य कौशल तथा हाव भाव इस गीत में निखर कर आए हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।